0: किसे घूमिए कप्तान में इंगेन
1: हमें जाते हैं ना कि गोगिले जोगी ने पेकिन का इन्हें तो तब केन्या अराब रुदा किंगों ने किंगन गुल्ले वो इंडिया रामो ये माते नीत को जरा सीज को गए को गा ये तो ने कितने न्यू कुमाओगे समझना सीज पे तू ताके कंगे तीन गुराया ने तासाम में मने बोगे जिसे मुद को गे जिसे चून मीता है उलीन को बाम मुमरे जू Suwon yu kusawa me aki jek ta yu lin. Gawin di aje nge joro nungu lin. Kumulin aje nge jawa landa e ngu nege. Aje nge jemu ta ege ke ae tumta kera te tumta.
2: Ketuteta mwa e nge emo FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono. Kenyo tungu.
4: Alright, amachapa tunelezi wana tusimbo kinika eskiza na tragaran kabisa Nekuni ngalega apche said motivational speaking jokes about our Bible verses Amachako biti na msimiti nguni agiote ngaliot emo yani EMOO kwa 231-75